0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर न जाय तो टिका तै जप माली तान मले शाखाय अंतर पूजा पड़े कते बाद संजम तुरका पहाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी बगान तनगल ताक तिनक ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साद उड़ी रास उड़ा वापार उड़ बोल करे आहार श्रमतरम का डेरा दूर नान कूड़ रहा परपूर मथे टिका तिड़ तूती गखाई हाथ छुरी जगत कसाई निलवस्त्र पैरे प्रवान मलिश्तान ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौंक पर किसैना जाना देखा चौंका कडीका उपरे आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन साडा फिटे तन फिटे फिट करेन मन जुठे चुली प्रेम ਓ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਐ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਐ ਪੌੜੀ।

अगे वस जानिए पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुसफी करे नानक गैसो मिले जे खटे।

0: चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए और मत सुनो अगली अब जो बिधुना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह गवाया अगला मुँह मुँह पाना खाए जिसका दिता खावना तिसके ये सहवास नानक हुकुम न चले नाल कसम चले अरदास
1: जरा अंत

रंग परंग ने एक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर पला तेरे कार्य आनंद वधाई तो दुख।

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोल जी वाहे गुरु बोल जे। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान भरोसा दान। दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान। चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पात दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जियो। श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुर धामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार तेसे बा संभाल दा दान। खालसा जी नू बख्शो हे नमानियां दे मान। नतानियां दे तान ने ओटियां दी ओटा। तान तान श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर सबद चौंकी आसा दी वार दे भोग जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद हो बन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सपंगुर प्रसाद चक चिहन यर भरन जात यर पात नहन जिह रूप रंग यर रेख पेख को कह ना सकत किह अचल मूरत अनपाओ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहण गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तय सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम भरनत सुमत अंतना पावत देव सवै मोन इंद्र महाशिव जोग करी फुन भेद बिरंच विचार रहयो हर जापना छाड़यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जगतारन कौ गुर ज्योत अर्जुन माहे तरी रे मन तेरो कोई नहीं खिंचले जिन पार बिरख बसेरो पंख को तैसो एहो संसार राम रस पिया रे जिह रस विसर गए रस और मोए क्या रोई है जाओ आपा थिर ना रहाए जो उपजय सो बिनस है दुख कर रोवे बलाए जह की उपजी तह रची पीवत मरदन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग लिख कत है न छूटिय खिन खिन फूलन हार बखसन हार बखसल नानक पार उतार सुकहु टल गुर सेवीऐ अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठिया सोइया सब ना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो
ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ।

जिस मनुख पह करों बेनती सो अपने दुख भरिया पर ब्रह्म जिन हृदय आराध्या तिन पौ सागर तरिया।

प्रभ ताज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस कट रह संबंध सैन साक कित ही काम न आया, हर का दास नीच कुल ऊंचा तिस संग मन बांछत फल पाया, लाख कोट बिखिया के बिंजन तामह त्रिसन ना भूजे, सिमरत नाम कोट उजियारा बसत अगोचर सूजे, फिरत फिरत तुमरा द्वार आया, पै पंच जन हर राया साध के चरण तोर जन बांछ, सुख नानक हो पाया फिरत फिरत तुमरा द्वार आया, पै पंजन हर राया साध के चरण तोर जन बांछ, सुख नानक हो पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुजरी महला पंजवा जिस मानुख पह कराऊं बेनती, सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, तिन भाओ सागर तरिया।

सगल जग चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिन नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिन नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबयो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपार हमरे दुष्ट सवै तुम कावहु आप हाथ द मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख्य सवै करतारा मोर अच्छा निज कार दै करिया सब बैरन का वाज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्य हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करियो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दास कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सत्रन को पलमो वध कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तार सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंब ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव ना पावत वेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही पूपा
अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहुर राच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद सरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवात उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तोज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कार मो सब होई दुष्ट छाह छुआ सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फासते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग केत मैं सारण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई खड़ग केत मैं सरण तिहारी आप हाथ दे ले हो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सवाय बहुपेद कहें हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहो सब तुहे बखाने दोहरा सगल द्वार कहो छाड़ कर गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार सगल

राम कले महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परिवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारु, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयां। कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइयां। कहे नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित कार अनहद वाजे अन

पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिया साब नानक ब्रह्म पसारो सलोका

रे को गुण नाही आपे तरस पयोय तरस पया मेहु रामत होय सतगुर सजण नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीवा हरिया तरस पया मेहु रामत होई।

अपराधी गुनहगार हौं बेमुख मंदा चोर जार जुआर हौं पार कार जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती अकृत कान मैं को ना रखंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बखसंदा असी खते बहुत कमाव दे अंत ना पारावार हर कृपा करके बखस लहु हौ पापी वाड गुनहगार हौ आया दूर हूं चल कै मैं तकी तौ सरनाए जियो मैं आसा रखी चित मह मेरा सब दुख गवाए जियो एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखहु सरनाई अंदर सच्चा नेह लाया प्रीत में अपने तन मन होए निहाल जा गुर देखा समण सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुरसह चटिया तुद डठे सच्चे पाते साह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहो सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक राज कपटं रूप कपटं तान कपटं कोल गर्भत है संचंत विखया छलं शिदरं नानक बेनहार संग न चालते राज कपटं रूप कपटं त
ਧਾਨ ਕਪਟੰ ਕੋਲ ਗਰਬਤ ਹੈ ਸੰਚੰਤ ਵਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦਰੰ ਨਾਨਕ ਬੇਨਹਾਰ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਤੇ ਪੇਖੰਦੜ ਕੀ ਭੁੱਲਾ ਤੁਮਾ ਦਿਸਮਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਡ ਨਾ ਲਹੰਦੜ ਮੋਲਾ ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਨਾ ਜੁਲੈ ਮਾਇਆ ਪੌੜੇ ਚੱਲਦਿਆ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਸੰਜੀਆ ਤਿਸ ਕਾ ਕਹੋ ਕਿਆ ਜਤਨ ਜਿਸ ਤੇ ਵੰਜੀਆ ਹਰ ਬਿਸਰਿਆ ਕਿਉਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਨਾ ਮਨ ਰੰਜੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਛੋੜ ਆਨ ਲਾਗੈ

अन्याव गुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुख

के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सवना देश सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठिया सोही सवना देश सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन है निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदन शरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थीव नानक

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु

जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।

मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुम्हार, घड़ भांडे टाकियां जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपुड़ी, चढ़ चढ़ पवे ग्यार।

0: लिखासी।
1: श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़िए जिते बरस बरस, पढ़िए जिते मास, पढ़िए जिते आरजा, पढ़िए जिते सास। नानक लेखै एक गल, होर हो मैं चखना चाक महला पहला।
0: लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बहुत तीर्थ भविया ते तू लव्या।

अंत ना जाने फिर पछतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेसे ते नहीं केवल हो मैं शब्द जलाए बोड़ी।

सब जग चलनहार। कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर, नानक वखाने बेनती तुद बाज कूड़।

पौड़ी दान मेहडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है। कूड़ा लाल छड़िया हो एक मन अलग ते आई है। फालते वे हो पाई है जे वे ही कर कमाई है। जे हो वे पूर्व लिखा ता तूड़ती ना दी पाई है। मात थोड़ी सेव गवाई है, मात थोड़ी सेव गवाई है।

0: बियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवे दाजे एक होए तो उगवे रुति हुरत होए नानक पाहे बाहरा गोरे रंग न सोए पै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पाओ तन होए नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोई महला पहला
1: लब पाप तुए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम नेप सत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रही।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुकाम न होई, तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलहारी कुदरत वसे।

0: कावे कुन बरन चार खट दर्शन दय मादक सिमरंथ गुना गावे कुन सहस शेष जे बरस आद अंत लिवलाक्तना गावे कुन महादेव बैरा के जिन तान निरंतर जान्यो कब कल सो जस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो राज जोग मान्यो बस्यो निर्वैर निरंतर शिष्ट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जनकाद जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सिक्यथ पलो जग पातालपुरी जयकार दुन कव जन कल वखाने हो हर नाम रसिख नानक गुर राज जोग तै माने हो।
1: सतयुग तै मान्यो छल्यो बल बावन पायो त्रित तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तारत कियो उग्र सैन को राज अपै भक्ते जन दियो कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुरमायो।
2: गुण गावे रविदास भगत जय देव तरलोचन नाम भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग मान जोग तेहान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान सुख देव परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल सुजस नानक गोर नित नव तन जग छायो सुख देव परीखत गुण रवे गौतम रिख जस गायो कब कल

प्रिया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमदी नूर अर सह कुरसह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सजन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सतना

अम्बर सरोवर पागा जिसका बिसर प्राण पत दाता सोई गनहो अपागा चरण कमल जाका मन राग्यो अम्बर सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा

त्यागे सब अनुराग जह जह पेखाओ तह नारायण सगल कटा मह तागा नाम यदक पीवत जन नानक त्याग सब अनुराग वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तन्हा श्री महला पंजवा जिस कौ बिसर प्राण पत दाता सोई गन हो अभागा चरण कमल जाका मन राग्यो अमै सरोवर पागा। रुत सरद अडंबरो असु कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलो गुणतास जियो। असुन आओ पिरा सातन चूर मुई नानक सोई दिन से सुहावड़ा जित प्रभु आवे चित जित देन विसरै पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी असुन प्रेमियो महड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन कणी

आप त्याग विनती करहे लहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मिलाईया से विछोड़े कतहे ना जाए प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए असो सुखी वसंदिया जिना माया हर राए असो सुखी वसंदिया जिना माया हर राए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आन मिलावे माए।

कौड़ी सतगुरु विटोहारे जित मिलिया कसम संभालिया। जिनकर उपदेश ज्ञान अंजन दिया निने तेरी जगत निहालिया। कसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा। सतगुरु है बोहता विलय के ने विचारिया।

0: जारदिक सुद्य जाय महला पहला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादं सिल पूज बगल सुमादं मुख झूठ बैपुखन सारं त्रैपाल ते हाल विचारं गल माला तिलक ललाटंग दोय धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं करमं सब फोकट निश्चो करमं कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कप।